लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी लाइका रेडियो नेटवर्क Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Feel good, lay back and enjoy the biggest hits through the night on Leica Radio.

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नान हुक्मे

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती सन बन।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहावे।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान।

0: Tasty Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Bollywood Flashback with Kajol.
1: Well, since some of you did not get the movie, let me play another dialogue, Shantaji, Aditi ji, Nirmal ji, this one's for you. Chaliye, let me play this dialogue again. Ek aur dialogue play karunga from this movie. And you've got to guess ki ye movie ka naam kaun sa hai. It's again a very famous movie. So yes, brace yourself, dialogue coming up.
2: मुझे यकीन नहीं हो रहा मोहिनी,
3: ये तो येड़ा बनके पेड़ा खाने वाली बात है मुन्ना भाई।
2: ज्यादा ही बोल रहे हैं।
4: फिर
5: बाद में मैंने उसे चने के झाड़ पर ही चढ़ा दिया।
4: चने के झाड़?
2: मैंने कहा मोहिनी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मुझसे इतना प्यार कर सकती है, और वो भी तेरे जैसी लड़की जिसके लिए कॉलेज का कोई भी लड़का मुन्ना, तुम मेरे लिए एक बार सिर्फ मुस्कुरा दो, यही काफी है।
5: फिर मैंने सोचा कि उस लड़की का फुल एंड फाइनल कर ही डाल।
4: तू तो एकदम करू पांडे है यार।
5: मैंने कहा यार मोहिनी, मैं आज तक अंधा था मोहिनी। मुझे पता ही नहीं था कि प्यार की जिस अनजानी खुशबू की तलाश में भटक रहा हूँ
4: वो मेरे इतने करीब।
5: मुन्ना मैं मोहिनी नहीं, मैं बबलू बबलू।
4: वो मेरे इतने करीब।
1: Well, I hope now send me your answers. मुझे आपके messages का इंतजार रहेगा. And of course, I will declare the winners during the show.
6: Leica Radio. This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com.
12: T's and C's apply.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90 सॉन्ग्स नॉनस्टॉप।

0: मॉर्निंग। आज के मौसम में भाई शुष्कपन है, थोड़ा बहुत बादलों का भी आना जाना लगा रहेगा और दोपहर बाद के मौसम में कुछ बूंदाबांदी भी शामिल है, लेकिन सब कुल मिलाकर के हवाएं भी तो चलेंगी ना। ठंड नहीं है आज, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री तक जाएगा लंदन में और भाई 17-18 तक जा सकता है मिडलैंड में भी। Enjoy कीजिएगा वेदर।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: Good morning. मनोरंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। बुधवार वर्ष 2026 के मई महीने की 20 तारीख हो गई आज और वक्त हो गया है हमारी आपकी मुलाकात का। कहाँ हैं आप? घर में, दफ्तर में या बीच सफर में? और कुछ भाई मेरे जैसी लेजी लोग अभी तक बिस्तर में? निकलिए, देखिए सूरज कहाँ तक चढ़ा हुआ। आजकल भाई बहुत जल्दी धूप निकल आती है। सुबह सुबह ये बताने के लिए सूरज देवता ड्यूटी पर पहुंच गए हैं, आप कहाँ हैं? आइए जुड़ जाइए संगीत के संसार से, बहुत सारे प्यार से, हमारे सत्कार से, हमारे उद्गार से। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ बहनों भाइयों, लेकर के आपका मन भावन शो मनोरंजन। और फिर आज तो बुधवार है और बुधवार के लिए हमारा ये परमानेंट इकरार है।
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: हंसना चाहिए और हंसाना भी चाहिए, पर कैसे साहब? महंगाई बढ़ रही है, आसपास टेंशन बढ़ रही है, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रही है। खर्च कुछ खास खास हैं यारो, और जेबें खलास हैं यारो। लोग टूटे हुए गिलास नहीं, उन गिलासों की प्यास हैं यारो। जिनका अपना नहीं कोई चेहरा, उनके चेहरे 50 हैं यारो। और देखकर आदमी के चेहरे को चुटकले तक उदास है यारो। हम बहुत दूर दूर हैं खुद से, आप जब आस पास हैं यारो, आप जब आस पास हैं यारो।
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, the Midlands and Greater

तो साहब इजाजत दीजिए और नमस्कार सलाम भाई क्या कहते हैं जो जो भी ग्रीटिंग आप पसंद करते हैं उसे स्वीकार कीजिए। खर्च कुछ खास खास है यारो और ये भी खलास है यार। अरे शर्मा जी पहले दुआ सलाम तो करो फिर आगे का काम करो। तो साहब स्वीकार कीजिए सलाम।

0: बोल दो बोल दो, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया बिल बिल से, बिल नहीं दिल दिल दिल दिल दिल से। हाँ क्या बात है साहब, हमें गीतों का रिस्पॉन्स आने लगा भाई, गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। एक तो हमारे एजाज भाई जो है हर गीत पर रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि भाई सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। किशोर कुमार वाला गीत आपके नाम, सुमन जी का जो हिस्सा था उसमें वो मैंने अपने नाम कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। और मौसी जी, मौसी जी मैं मर जाऊंगा कट जाऊंगा, मौसी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। नहीं मौसी नहीं है भाई, ध्यान से पढ़िए। क्या कर रहे हो शर्मा जी, वो मानसी लिखा हुआ है, मानसी जी, मानसी जी पपी ड्यूट आपको कहती है। फुट टैपिंग, मेरे पांव थिरक रहे हैं आपका ये गीत सुन के, ये आपके नाम किया। चलिए थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं सीजर फर्नांडिस साहब, हेना, अरुणा, सहर, निर्मला, वियाना में अनिल सोनी सुन रहे हैं, और हेतल सोलंकी, पम्मी, ये सब वो लोग हैं भाई जो मेरे परिवार का, मेरे संसार का हिस्सा बन चुके हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आपको पाउंड का रेट बता दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. They are telling that your £1 in your pocket, British sterling can get you up to 129.15 rupees today. 129 rupees 15 paise ka rate chal raha hai. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. Then you get special treatment. By kya milega? You'll get. You can win a £75 voucher every day, not every week, every single day. And when you send over £1,000, tab milega ye. Also, 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. But remember, TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio. The wait is now over. The King of Melody. Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events, and PRC Direct, exclusive radio partner, Leica Radio.
3: 105 shows pura karya pachi, have Leicester ma avi rahyu chhe, ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
4: Jay's Entertainment line avi rahya chhe, sakhna re jo husband ji.
3: Leena Shah ane Samir Shah saate haasiyano full dose. 28 June, People Center Leicester ma, be shandar shows, bapore adi vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B 07860-280-655, Mumbai Sandwich Station 07834832249 athwa eventbrite.co.uk.
5: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020
9: 9963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
12: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
5: Mantra Holidays.
13: What's your travel mantra?
14: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
15: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
16: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
14: अरे कहाँ हो तुम?
15: हो आलो आलो।
16: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
1: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392.
17: Abira, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था. भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
18: अगर हम साथ हैं
17: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
19: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
20: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स.
1: Listen back to your favorite shows by logging on to likeradio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और लीजिए बहनों भाइयों, अगला गीत परोसने से पहले इन साहब की सुन ले. ये आए हैं एक बाबा जी की शरण में. बाबा जी चटाई बिछाए बैठे हैं, साथ में उनका चेला छोटी चटाई बिछाए बैठा है और ये दुखी परेशान शक्ल से लगता है जैसे शादीशुदा हूँ. भाई परेशान और कौन हो सकता है. अब आके चरणों में लेट गए, कहते बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही सज्जन इंसान हूँ, लेकिन हाँ लेकिन बताओ क्या तकलीफ है भाई. बाबा जी बहुत बड़ी तकलीफ है. अरे बताओ तो सही बाबा जी, मेरी बीवी हाँ मेरा कहना नहीं मानती. बाबा जी बोले, बेटा तुम्हें क्या लगता है हम यहां बाबा बन के चटाई पे क्यों बैठे हैं, हमारी मानती तो हम भी घर रहते हैं. किसी की भी नहीं मानती है भाई, सोच लो. दुनिया में इसीलिए शांति है क्योंकि किसी की बीवी किसी का कहना नहीं मानती है.

0: feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और बहन भाइयों, लाइका गोल्ड पर ये मनोरंजन है और इसमें जो 10:30 का वक्त होता है उसमें जर्नलिज्म है, उसमें भाई सूचनाएं हैं, समाचार हैं। तो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो तैयार हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं और वहां की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से उन्होंने मुलाकात की है। इसके बाद इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया। वीडियो में प्रधानमंत्री उन्हें ट्रॉफी का एक पैकेट देते दिख रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री बड़े सयाने हैं। हाँ। तो उस ट्रॉफी के पैकेट के लिए जहां इटली की प्रधानमंत्री उनका धन्यवाद कर रही हैं, वहां राहुल गांधी जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हो रहा है ये, इटली में ट्रॉफी बांटते घूम रहे हैं, यहां आर्थिक संकट चल रहा है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। आर्थिक तूफान सर पर, माली संकट सर पे है और हमारे वजीर आजम, हमारे प्राइम मिनिस्टर इटली में ट्रॉफियां बांट रहे हैं। एक खबर मध्य प्रदेश की बड़ी चर्चा में है भाई। भोपाल में 33 साल त्विशा शर्मा की मौत के बाद उनके वकील अंकुर पांडे ने कहा है कि इस मामले में अभियुक्त बेहद प्रभावशाली है और इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। भाई ससुराल वालों का कहना है कि वो उनकी मौत हुई है किसी और कारण से, लेकिन उनके परिवार वाले, मायके वाले पोस्टमार्टम की मांग करते हुए कहते हैं कि ये हत्या है क्योंकि उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान पाए गए। अब ये घटना या दुर्घटना जो है इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इंटरनेशनल खबरों में, चीन खरीदेगा अमेरिका से 200 विमान, 200 हवाई जहाज, ये सौदा हुआ है। चीन ने अमेरिकी प्लेन कंपनी बोइंग से 200 विमान खरीदने के सौदे की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की पिछले सप्ताह बीजिंग में मुलाकात हुई थी। उसमें कहा गया था कि चीन अमेरिका से हवाई जहाज खरीदेगा। चीन की कमर्शियल मिनिस्ट्री ने आज कहा है कि समझौते के तहत अमेरिका जो विमान इंजनों के पुर्जों और दूसरी जरूरी कॉम्पोनेंट्स की सप्लाई की भी गारंटी देगा। ताइवान के भोजन और निषिद्ध प्रेम की कहानी पर आधारित एक नॉवल, एक उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है। पहली बार है जब मंदारिन चीनी से अनुदित यानी ट्रांसलेटेड किसी नॉवल को ये सम्मान मिला है। ये नॉवल ताइवानी लेखिका यांग शुआंग जी और ताइवानी अमेरिकी अनुवादक यानी ट्रांसलेटर लिन किंग की प्रोडक्ट है। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया है और 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है, जीत ली है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 78 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश ने जीत के लिए 437 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 358 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन की पारी खेली थी। ईरान युद्ध को खत्म करने पर शी जिनपिंग ने दिया 4 सूत्रीय प्रस्ताव, 4-point प्रपोजल। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि मिडल ईस्ट की स्थिति एक निर्णायक यानी फैसला कुंज मोड़ पर पहुंच गई है, अब ये युद्ध से शांति की ओर बढ़ने के दौर में है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि इस संघर्ष को खत्म करना बेहद जरूरी है, दोबारा युद्ध शुरू होना मंजूर नहीं किया जा सकता। भारत समेत कई देशों के लोगों को अब थाईलैंड में 30 दिनों से ज्यादा ठहरने के लिए वीजा लेना होगा। अब तक वीजा नहीं लेना पड़ता था। जुलाई 2024 से 93 देशों के पर्यटकों को बिना वीजा 60 दिनों तक थाईलैंड में रहने की इजाजत दी गई थी। यह कदम कोविड महामारी के बाद इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था, लेकिन कल मंगलवार को थाई सरकार ने इस छूट को खत्म करने की योजना को मंजूरी दे दी है। और पाकिस्तान की एक खबर, इस्लामाबाद की एक अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की हत्या के मामले में, उसके कत्ल के मामले में अभियुक्त उमर हयात को सजाए मौत सुनाई है। कल मंगलवार को इस्लामाबाद की एक जिला और सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उमर हयात को सना के परिवार को मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा उमर हयात को सना यूसुफ के घर में डकैती के क्राइम सहित कई धाराओं के तहत कुल 21 साल की सजा भी सुनाई गई है। आपको बता दें कि पिछले साल इस घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा था कि उमर हयात कथित तौर पर सना यूसुफ के घर में घुस गया था और उसने उसे 2 बार गोली मारी थी। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हालिया यात्रा के बाद अब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिखर वार्ता करेंगे। इस साल पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा है, फॉरेन ट्रिप पहला है उनका ये इस साल का। इससे ये भी पता चलता है कि मौजूदा माहौल में चीन कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। पश्चिमी पाबंदियों के बावजूद चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। पुतिन इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में एक हवाई हमला हुआ है इसराइल की ओर से, इसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में देर कनो कस्बे में एक घर को निशाना बनाया गया है। मरने वालों में 3 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। लेबनान 2 मार्च को इस युद्ध में शामिल हुआ था जब ईरान के हिमायती शिया इस्लामी संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागे थे। तब से इसराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं लेबनान पर। और एक बार फिर बता दें कि 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जिजिया मेलोनी से उनकी इस समय मुलाकात चल रही है और द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। इसके बाद आज ही वो भारत के लिए वापसी पर रवाना हो जाएंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है
1: लाइका रेडियो
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
3: वेरी गुड मॉर्निंग। आइए अब लौट आइए वापस संगीत की ओर। काफी दिन हो गए हैं जगजीत सिंह की वो गंभीर आवाज, जिसे हम कहते हैं भाई उस आवाज में अंबर की ऊंचाई है तो समंदर की गहराई भी है। लता जी के साथ गा रहे हैं ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
2: और साउथ ऑल ट्रेवल का भाई ये पैगाम आपके नाम, वो कह रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ ऑल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years. यस, इतने पुराने हैं और बड़े सयाने भाई, दे आर द विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड एज वेल. विजिट साउथ ऑल ट्रेवल और कॉल 0208 5748410.

0: लौट आइए संगीत की दुनिया में, मस्ती भरा म्यूजिक आरडी बर्मन की कंपोजिशन हो सकती है ये, या किसी और की है क्या मालूम भाई, पुरानी फिल्म है मेला। तो आइए चलते हैं मेले में, जहाँ मस्ती है, संगीत है, नृत्य है
1: के हाथ में
0: और श्रृंगार की चीजें हैं।

0: Mica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: अपनों को पैसे भेजने का सही समय है भाई. लेट मी टेल यू द लेमफाई के रेट्स इस समय एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.52 रुपीस, पाकिस्तानी 372.81, श्रीलंकन रुपए 445.41 और बांग्लादेशी टके 164.36 और हाँ अफगान अफगानी 84.28.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Well, gold, yes, Leica gold, but gold ka rate. The gold is trading at the rate of 107.46 pounds per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: भाई टाटा आईपीएल 2026 में पहले चर्चा करें कल के मैच का. और कल जो मैच खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, भाई पिंक सिटी जयपुर में धूम मचा दी उस बच्चे ने. वो 15 साल का लड़का यार, वो 14 साल का था तभी वो छक्के मार रहा था, पता नहीं कितने रिकॉर्ड बनाएगा. राजस्थान रॉयल्स को उसने जीत दिलाई, 7 विकेट से 5 गेंदों के रहते जीत दर्ज कर ली. लेकिन साहब चर्चा का विषय रहा वैभव सूर्यवंशी. आज के मैच की क्या खबर है? आज मैच होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच, और ये मैच भी बहुत दिलचस्प होने वाला है भाई. टूर्नामेंट का ये 65वां मैच होगा. दोपहर बाद 3 बजे खेल शुरू होगा. स्कोर क्या करें हम आप तक पहुंचाएंगे. सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA.
2: ये है लाइका रेडियो.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। दिस इज लाइका रेडियो नेटवर्क, लाइका गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा, दैट्स माय नेम। और बहनों भाइयों, मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर रहूंगा। इस वक्त ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। टाइम इज टू ब्रिंग यू द थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन।

आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं जर्मनी से, फ्रैंकफर्ट से कार्तिक शर्मा का भेजा आलेख। कहते आज एक खास दिन है, प्रेरणा देने वाला दिन, इंस्पायरिंग डे। भाई वैसे तो कदम कदम पर हमें ऐसे प्रसंग मिलेंगे, संदेश मिलेंगे, वाकई मिलेंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज वो दिन है, 20 मई का दिन, जब वो पुर्तगाली नाविक 1498 में भारत के कालीकट यानी वर्तमान समय जो कोझिकोड है उस किनारे पर पहुंचा था। और जानते हैं, इससे यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार का नया रास्ता खुला था, एक नया माइलस्टोन, एक नई अचीवमेंट इतिहास में। 20 मई का दिन भाई लिखा गया संस्कृति और प्रेरणा से भरा, क्योंकि कई नजरिए से, कई दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो दुनिया में और भी कई तरह की उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, लेकिन वास्को डी गामा आज के दिन पहुंचा कालीकट में, एक नए रास्ते को तलाश करता हुआ भाई वहां पहुंच करके भारत और यूरोप के बीच एक पुल का काम किया। इस रास्ते ने दो महाद्वीपों को जोड़ने का काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वास्को डी गामा समुद्री सफर पर निकले, तब उसके कई साथियों ने, अनेक नाविक डर गए थे अनजाने सफर पर। महीनों तक समंदर में अगर आप रहेंगे तो भोजन पानी की कठिनाई है, फिर मौसम बदलते हैं, तूफान आते हैं, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। पर वास्को डी गामा ने नहीं सुना। कहते हैं कि क्या होने वाला है, जो अज्ञात है, जो छुपा हुआ है, जो मालूम नहीं है, उसी को पता लगाने का काम तो साहस कहलाता है। नई राहें, नए रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो अज्ञात से नहीं डरते। क्या होगा इस बात से वो घबराते नहीं है, जो होगा देख लेंगे और वो आगे बढ़ते हैं। याद रखिए बहनों भाइयों, इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं, बल्कि ये भविष्य को दिशा देने वाला एक एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस पर टिके हैं बहुत सारे तजुर्बे और बहुत सारी अचीवमेंट्स। तो आलसी देखते हैं किनारे खड़े, पर चलने वाले तो तूफान में भी चल पड़े, निकल पड़े, हिम्मत नहीं हारी और फिर पाया नाम। अब बहुत सारे लोग सफर करते हैं उस रूट पर, लेकिन किसी का नाम वास्को डी गामा की तरह से इतिहास में अंकित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। तो बहनों भाइयों, अगर कुछ पाना है तो जाना है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है।

0: चलते रहो कि राह बनेगी, अंधियारे में चाह जगेगी, ठोकर देकर गिरा समय तो हिम्मत फिर भी साथ चलेगी। सपनों की लौ बुझने ना देना, मेहनत ही पहचान बनेगी। रुकना मत तुम जीवन पथ पर, एक दिवस मंजिल मिलेगी।
1: तन चिंतन।
0: जो इंसान मुश्किलों में भी कोशिशें नहीं छोड़ता है, वही तो इतिहास रचता है, वही कुछ बनता है और दुनिया के लिए कुछ बनाता है। 20 मई 1498, 1498, that was the day when Vasco da Gama reached India. एक सबकॉन्टिनेंट की खोज जिसने दो द्वीपों को जोड़ा। और भाइयों, आज का दिन इतिहास बन गया, वास्को डी गामा मशहूर हो गया। उनके नाम से कई स्मारक हैं। पुर्तगाल का ये नाविक दुनिया के लिए प्रेरणा का संदेश बन गया। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से कार्तिक ने भेजा है आज का चिंतन, आज का आलेख। और भाई, जो गीत हमने सुनवाया हिमालय से ऊंचा फिल्म से लिया गया था, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में इसे संगीतबद्ध किया था कल्याण जी, आनंद जी ने। याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। भाई, चिंतन के बहुत सारे प्रेमी हैं जो चिंतन सुनते हुए ही प्रशंसा में शब्द लिख भेजते हैं। उनमें शामिल है हमारे महेंद्र पटेल क्रॉयडन में, स्लो में रानी और वत्सला जी। प्रणाम, नमस्कार। कहती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। थैंक यू अर्जुन जी, चिंतन का गीत आपको बहुत पसंद आया और संदेश भी। बुशी में जगदीश जी, सोना इस ऑफ यू, सुनीता शर्मा, अनिल सोनी, रागिनी, महेंद्र, विमल रायन साहब, थैंक यू वेरी मच। चिंतन अच्छा लगा। विमल जी, अरुणा, भूपेंद्र पटेल, हरविंदर, रेगुलर लिसनर, जैस्मीन, थैंक यू वेरी मच। जहीर खान कराची में सुनते हैं हमें और रिस्पॉन्ड करते हैं, थैंक यू जहीर भाई। और हमारे बैसन साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आंखों पर आपकी ये जो सामग्री है ये बड़ी क्या कहते हैं उपयोगी है। देशराज बैसन जी, प्रकाश सूथर, भरत गंगाराम, अनीता, करसन पिंडोरिया, रंजन पम्मी स्लाव में सुनते हैं। भाई, गीत संगीत तो एंजॉय करते हैं, वो खबरों को भी सराहते हैं, कहते हैं समाचार मुझे बाते हैं। और साहब आप हैं गैरी बराड़। गैरी साहब, थैंक यू, पहली बार आपका मैसेज देखा है प्रोग्राम में, सर आंखों पर, थैंक यू। आनंद तोमर जी, सीजर फर्नांडिस आपका नाम मैं ले चुका हूं। अरुणा और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दें। और भाई धन्यवाद दें फारूक मोहम्मद को भी, इस लंदन में सुन रहे हैं। आज का चिंतन अब समाप्त होता है। चिंतन

0: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: और लीजिए साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश आपके नाम। कह रहे हैं कि अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो रेट अच्छा है, समय अच्छा है, अनुकूल है, तो भाई कीजिए। टुडे योर वन पाउंड कैन गेट यू अप टू 129.15 रुपीज, 129 रुपए 15 पैसे, अच्छा रेट है। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच, किसी भी ब्रांच में जाके या ऐप के माध्यम से पैसे भारत भिजवाइए। और भाई जून से पहले भिजवाएंगे, जून के एंड से, समाप्ति से पहले, तो नोट कर लीजिए, यू कैन बी इन टू विन ए 75 pounds वाउचर एवरी डे, यस, व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, रिमेंबर दैट। ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन यू सेंडिंग ओवर 2000 pounds, DNC apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 lbs सिर्फ 34.99,
3: हमजा समोसास 3 for 10,
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
3: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
3: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
3: While stocks last.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel, at all protected.
8: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner Leica Radio.
10: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
11: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
12: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 p.m. only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
13: Presented by Southall Travel. Powered by Tata Tea Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
14: missed your favourite show on Leica Radio Midlands, you can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
15: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
16: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
17: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
15: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड, LE4 5EA.
17: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
14: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
18: Leica Radio.
14: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, ya flight. Aap choose karo apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: बैक टू बैक संगीत सुन रहे थे आप, बस दो गीत हमने परोसे और हमारे श्रोताओं को पसंद आए, उनके पैगाम भी आए। भाई पहला गीत जो था सामने मेरे सांवरिया, ये कौन सी फिल्म का था, वनीता, सुनीता, अनीता, समथिंग समथिंग, ओ फिल्म का नाम था अनीता, लेकिन भाई फरमाइश करने वाली का नाम था सुनीता। कहती अक्सर इस गीत को मैं गुनगुनाती हूँ, थैंक यू वेरी मच। और भाई दूसरा गीत जो था जो अभी आप सुन रहे थे, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म तुम्हारी कसम, और गाने वाली आवाजें थी ए किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की। तो आ गए हैं भाई हम इस मोड़ पर, अब ये गीत सुनिए। इसमें एक बार हुआ क्या कि एक आदमी मृत्युशैया पर पड़ा था, क्या कहते हैं उसको, आखिरी स्टेज पर, हॉस्पिटल में लगता था कभी भी निकल लेगा। आखिरी फरमाइश पूछी, उसकी बेगम पास बैठी है, उसको कह रहा है मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करना बेगम, ये मेरी बस यूं समझ लो कि आखिरी तमन्ना है।
1: ऐसा क्यों कह रहे हैं सरदार, आप ठीक हो जाएंगे।
0: अरे नहीं ठीक होऊंगा, आप लगता है मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, बस कुछ करने वाला हूं, बस एक मेहरबानी करना।
1: हाँ हाँ कहिए कहिए।
0: मेरे जनाजे पे वो जो गली की आखिरी नुक्कड़ पे जो तीन लेडीज रहती है ना, वो तीन बुढ़िया रहती है जो, उनको जरूर बुलाना मेरे जनाजे पे।
1: हाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं जी।
0: मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है किसी भी जनाजे पे ना वो मुर्दे को बड़ा चिपक चिपक के रोती है, जरूर बुलाना उनको मेरी। कमाल है भाई, आजकल लोग पहले पक्का करा लेते, अपना फ्यूनरल भी बुक करवा लेते हैं, अपनी सब कुछ भाई प्लान्ड होता है आजकल, होता है कि नहीं।
2: दिस इज लाइक अ रेडियो फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स, विजिट dairyvalley.net।
0: और मौत के सामने डटकर खड़े एक और आदमी का किस्सा याद आ गया। भाई डटकर नहीं खड़े थे, लेटे हुए थे, चलने की तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे निकल लो, नहीं नहीं, इतने में भाई साहब वकील साहब पहुंच गए अपना बस्ता लेके, कलम दवात लेकर के, कहने लगे आप तो जा रहे हैं। हाँ जा रहा हूं। हाँ तो जाते जाते एक काम करिए ना, वसीयत लिख जाइए। वो क्या होती है? अरे वसीयत का मतलब है कि आप किसी के नाम कुछ लिख देंगे तो उसको मिल जाएगा। अच्छा लिखवाइए लिखवाइए, मैं लिखता हूं, वकील साहब ने कहा। तो वो कहता है ठीक है, ऐसा करो नत्थू की दुकान भरतू के नाम लिख दो। और वो जो अब्दुल भाई की वर्कशॉप है वो मरियम के नाम लिख दो। और वो जो साइकिलों की दुकान है ना हर्बर्ट की, हाँ वो मेरे बेटे का नाम लिख दो। क्या कमाल कर रहे हैं भाई, अब दूसरों की चीजें किसी किसी के नाम लिखवा रहे हैं, आप अपना कुछ लिखवाइए। कहने लगे अपने पास कुछ नहीं है, लिखना है तो लिखो वरना चलते बनो। आ गए कागज कलम दवात लेके, एक और चीज लिख सकते हैं हम आपके नाम, एक प्यारा सा पैगाम, दिल आपके नाम।

0: एस जानकी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे बैक टू बैक संगीत के तहत में। पहला गीत था हम सब उस्ताद हैं फिल्म से अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, और ये गीत था फिल्म सत्यमेव जयते से। सत्य ही हमेशा विजयी होता है, जीतता है। पहला गीत लता जी की आवाज में था और ये था एस जानकी के स्वर में। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए तीसरे दौर का हमने आगाज किया है। बहनों भाइयों, माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूं। भाई, आपके घर परिवार में अगर आज किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बधाई स्वीकार कीजिएगा। वैसे आपको बता दूं कि जिसका भी आज जन्मदिन है वो जिनके साथ साझा कर रहे हैं, एनटी रामाराव साउथ में, भाई ये हैदराबाद में एक एक्टर हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन ये वो वाले एनटी रामाराव नहीं है जो पुराने वाले, ये जूनियर हैं, यंग हैं। तो इनका जन्मदिन है, 1983 में जन्मे थे। इसके अलावा साउथ में ही बालू महिंद्रा जो है वो श्रीलंका के डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर, लेकिन ये इंडियन फिल्मों को डायरेक्ट करते रहे इसलिए इनका जिक्र आया है। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती वाल ये जो है एक हिंदू गुरु हैं, इनका आज जन्मदिन है, 1894 में जन्मे थे ये। और सुमित्रा नंदन पंत, भाई हिंदी से जिनका कुछ थोड़ा बहुत भी लेना देना है वो इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। सुमित्रा नंदन पंत, भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया था। उनका साहित्य जो है सर आंखों पर स्वीकार करते हैं भाई, हिंदी के जिज्ञासु। और 20 मई यानी आज के दिन 1900 में ये जन्मे थे पंत साहब। इसके अलावा आज जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम है विजय वसंत, विजय मौर्या, ये सब भाई फिल्मी दुनिया के उतने करीब से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी फील्ड में जरूर नाम जो है कमा चुके हैं, इसलिए इनका नाम सामने आया है। और भाई आज एक नाम ये शायद आपने सुना होगा, अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो अंजुम चोपड़ा को जरूर देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए, जानते होंगे आप इन्हें। मई 20, 1977 में जन्मी थी दिल्ली में इंडियन वुमन क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा। गेंदबाजी भी करती थी और अच्छी बैटर भी रही। भाई अंजुम का आज जन्मदिन है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू हर। इसके अलावा भाई और भी कई लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और बता दें आपको भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 129.15 रुपीज, 129 रुपए 15 पैसे। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच, किसी भी तरीके से भिजवाइए ऐप के माध्यम से या किसी ब्रांच में जा करके, लेकिन कीजिए ये काम जून के अंत से पहले, बिफोर एंड ऑफ जून, एंड बी इन टू विन ए 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 LBS, sirf $24.99.
2: Hamza Samosas, 3 for 10.
3: Top Star Fried Onions, only 99p.
2: Suhana Masalas, 2 for 150. Ramdev Namkeen, 2 for 149.
3: Hira Gram Flour, 179. Heinz Ketchup, 279.
2: Kesar Mango Pearl, 149. Full Makana, 245. Falcon Cash and Carry.
3: 82 Assistant Street, LE12JU. Ya Rowlett Hill, LE54UN.
4: While stocks last, this Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Thompson. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
6: In Dubai.
8: 105 shows pura karya pachi. Have Leicester ma avi rahyu chhe. Ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
9: Jay's Entertainment. Line avi rahya chhe. Sakhna re jo husband ji.
8: Leena Shah ane Samir Shah saate. Hasiano full dose. 28 June. People Center Leicester ma. Be shandar shows. Bapore adivage. Ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo. Mr. B07860-280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 Athwa eventbrite.co.uk Sakna rejo, husband ji.
10: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
12: गारंटेड
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
13: साउथ हॉल ट्रेवल
14: फोन 02085748410।
13: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
15: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
16: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
15: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
16: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
17: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
18: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
19: खुद से भी ज्यादा।
17: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
19: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
17: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
20: Punjab, the biggest tunes, none.

0: ਲਾਇਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਇਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਇਕਾ ਰੇਡੀਓ.com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਇਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7, and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और बहन भाइयों, ये तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है शम्मी कपूर. शम्मी कपूर जाने माने अभिनेता भाई, पहले हीरो के रूप में आए, फिर कैरेक्टर रोल भी उन्होंने बहुत निभाए. और शम्मी कपूर यानी कपूर परिवार के वो एक ऐसे अनमोल रत्न, अब इस दुनिया में नहीं है. 14 अगस्त 2011 में उनकी डेथ हो गई. उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1931 में. और शमशेर राज कपूर उनका असली नाम था, शॉर्ट में शमी. और भाई राज कपूर कहते थे मेरा नाम जोकर, शशि कपूर कहते थे राजा साहब हूं मैं, और शम्मी कपूर थे लाट साहब. यस, एक से बढ़ के एक उनकी फिल्में हिट होती थी. उनकी जो संवाद अदायगी और भाई उनके वो जो एक्सप्रेशंस थे और उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स होती थी ना, लोग उन्हें कॉपी करते हैं. हिंदी सिनेमा के एक जगमगाते सितारे शम्मी कपूर साहब आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, और उनकी फिल्मों के कई गीत आपको सुनने को मिलेंगे इस सप्ताह में.

0: साथ है।
1: शम्मी कपूर की बात होती है तो भाई उनकी कुछ एक फिल्म यानी राजकुमार से लेकर के जो हिट गीतों के लिए फेमस रही है उन फिल्मों में ये नाम आते हैं। और एक गीत और जो अगला आ रहा है, हालांकि वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक टाइटल के तहत नहीं बल्कि सुनवा रहे हैं। कौन सुनवा रहे हैं? सुनवा
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
1: जैसे फिल्मी दुनिया में भाई राजेश खन्ना का राज रहा, दिलीप साहब, राज कपूर और फिर बाद में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऐसे ही कहते हैं कि कुछ समय के लिए शम्मी कपूर का भी एक दौर था जब उनका नाम चारों ओर था।

हमने नहीं छोड़ी है भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ी है। कभी कभी शराफत कर लेते हैं, कर भी लेनी चाहिए, जरूरत पड़ती है। लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, यादगार फिल्म, यादगार गीत।

0: कोई ना कोई कारण होता भाई शराफत छोड़ देगा, ऐसे तो कोई नहीं छोड़ता। कोई भी आदत हो छुड़वाने के पीछे रीजन होता है। अब एक साहब थे, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करते थे, रोमांटिक कविताएं, प्यार मोहब्बत की कविताएं। काफी दिनों से उसने लिखना बंद कर दिया। पूछा, क्यों भाई आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ? कहता, नहीं भाई, जिस लड़की के लिए मैं वो प्यार मोहब्बत की कविताएं लिखा करता था ना, उसकी शादी हो गई। हमने कहा, भाई फिर तो और भी अच्छी बात, आप दर्द भरी कविताएं लिखो, विरह रस में लपेट के वो जो शायरी बड़ी अच्छी बनती है भाई, वियोग में, दर्द में, बिछोड़े में। कहता, नहीं यार तू समझा नहीं, उस लड़की की शादी हो गई है और वो मेरे साथ ही हो गई है। इतना दर्द अब बखान नहीं किया जाता। क्या बात है, आदत छोड़ दी मैंने कविता लिखने की। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. डीजे साहब, Southall Travel का ये संदेश है, मेक दिस समर मेमोरेबल विद Southall Travel, एक्सप्लोर बिटवीन ब्रेक्स एंड सिटी, बीच ब्रेक्स एंड सिटी एस्केप्स। और भाई हॉलीडे डील्स हैं उनके पास बहुत सारी, जिनमें फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटोल प्रोटेक्शन सब शामिल हैं। 40 बरस से ज़्यादा का अनुभव है, इसलिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। और वो ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड के विनर भी हैं, विजेता भी हैं, इसलिए भाई बहुत मशहूर, बड़े प्रतिष्ठित और बड़े ही नाम वाले ट्रैवल हैं Southall Travel, ट्रैवल एजेंट हैं। विजिट Southall Travel और कॉल 0208-574-8410। Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. ये है Leica Radio. Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, Siddhayu. Now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: LemFi मोबाइल ऐप द्वारा भाई प्रायोजित ये जो करेंसी रेट से नोट कीजिए, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.73 रुपीस, पाकिस्तानी 373.38, श्रीलंकन 451.56, बांग्लादेशी टके 164.73 एंड अफगानी 84.5.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
3: The gold is trading at the rate of 107.46 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
4: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: ये है लाइका रेडियो। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: भाई कल के मैच का नशा अभी तक तारी है क्योंकि वो यादें जारी हैं। कल जो वैभव सूर्यवंशी ने चौके छक्के लगाकर 38 गेंदों पर 93 रन ठोके, भाई उसे लगता है कि ये 15 साल का बच्चा जो है काफी दूर का सफर तय करेगा क्रिकेट के इतिहास में, क्रिकेट के जगत में। और साहब जीतने के बाद देखिए पोलाइट भी कितना है, क्या कहता है।
2: अभी आपने ही बताया, नहीं अच्छा लग रहा है और ट्राई करूंगा अभी और मारू अगले गेम्स में भी और टीम के लिए अच्छा करूँ,
1: कोशिश करूंगा अभी और अच्छा करूं अपनी टीम को जीतूं। अभी राजस्थान रॉयल्स ने कल का मैच जीता लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बदौलत। आज के मैच का इंतजार है तो आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 का जो आज का मैच है वो कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और साहब ये ईडन गार्डन के मैदान में मैच दोपहर बाद 3 बजे यहाँ के समय के अनुसार शुरू होगा। स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे, सुनते रहिएगा।
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
4: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
3: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
4: Also explore 2026 cruises
3: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 011621672225. We're at all protected.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
7: Atif Aslam live in the UK.
6: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
7: Book your tickets now at AXS.
6: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
0: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
16: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
17: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: और लीजिए साहब, कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है। पहले धन्यवाद दें भाई प्रवीण जी, आप कौन से देश से मैसेज भेजा? ये शायद ब्रसल से है या कहाँ से है? आपका नंबर तो इंटरनेशनल है लेकिन आप प्रोग्राम सुन रही हैं और सराह रही हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आंखों पर आपका ये संदेश। और साहब, हमारे बैसन साहब ने जो चुटकुले भेजे हैं, समय नहीं बचा वरना प्रोग्राम में शामिल करते। विजय मॉरिशस से हमें याद कर रहे हैं, थैंक यू। और भाई कार्यक्रम का आखिरी गीत छोड़िए साहब, समय कहाँ बचा है। बाबा
18: वो चले, हाँ वो चले, वो चले।
1: और अब आप सरिता सबरवाल से मिलेंगे 1 बजे की खबरों के बाद। हम चले
18: चले।

0: क्या आपने भी मेरा रास्ता देखा?
1: मैंने भी इंतजार किया
0: कि स्टूडियो में पहुंचूं और आपके लिए अच्छे अच्छे गीत प्रस्तुत कर लूं। लाइगर रेडियो नेटवर्क के जरिए आजकल हमारी मुलाकात हो रही है, बाली जी का प्रोग्राम है, लेकिन पेश कर रही है सरिता सबरवाल। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ भी गवारा कर रहे हैं, मेरा साथ आपको पसंद आ रहा है। प्रोग्राम की शुरुआत हुई बॉर्डर के एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, स्क्रीन प्ले था जेपी दत्ता साहब का, स्टोरी बाय जेपी दत्ता साहब, प्रोड्यूस बाय जेपी दत्ता साहब। जिस फिल्म में काम किया सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बैरी एंड कुलभूषण खरबंदा के साथ और भी बहुत सारे एक्टर थे। एंड इस फिल्म को बहुत से अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड टू जावेद अख्तर साहब, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल हरिहरन, एंड और भी बहुत सारे अवार्ड्स थे। अनु मलिक जी का था संगीत। तो आज के प्रोग्राम का आगाज इस गीत के साथ हुआ। दूसरा गीत मैंने शेषनाग से चुना था। शेषनाग फिल्म किसने बनाई थी भाई? के आर रेड्डी थे जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था। जितेंद्र, ऋषि कपूर, रेखा, माधवी एंड मंदाकिनी ने इस फिल्म में काम किया था। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद की। पहली गीत के बोल क्या था? वेल, शुरू तो होता है माही माही से, लेकिन मैंने चुना हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। सो हमें जब से मोहब्बत हो गई है, तो पहला गीत था हमें जब से मोहब्बत हो गई है, दूसरा था हमें आसमां से। सो तीसरा गीत किस वर्ड पर होगा? ज़रा सोचिए सोचिए, तब तक मैं ज़रा ये काम कर लूँ। लेकिन काम क्या करना है? पहले तो आपसे ये पूछना है कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ, करती रहूँगी। और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जिए और जिए शान से, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और तिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाती हूँ मैं, मेरे मन को भाते हैं तो आपको भी पसंद आते होंगे ज़रूर। अगर आते हैं तो फिर इशारा चाहिए मुझे आपकी तरफ से। इशारा कैसे करते हैं? आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, आपके पास नंबर तो आपके दिल दिमाग पर लिखा हुआ है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: With your £1 in British sterling can get you up to 129 rupees and 15 pesas. अगर आप पैसे भेजेंगे SBI के जरिए। So send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be into win £75 voucher every day. Yes, every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000 to India anywhere. TNC applies. So der mat kijiyega.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: चलिए भाई बताई देती हूँ, अगला वर्ड है जब से। जब से पर कौन सा गाना आपको याद आ रहा है? मैंने कालिया का गीत चुना है, 1981 की फिल्म थी कालिया, उसका गीत है। कौन सा गीत हो सकता है? याद कीजिए और मुझे बताइए।
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 lbs सिर्फ 24.99।
3: हमजा समोसास 3 for 10।
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
3: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
3: केसर मैंगो पल 149। फूल मखाना 2 for 5। फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 एसिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
3: stocks last.
5: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
2: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
5: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
3: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Tumhe dil lagi.
2: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
8: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
2: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
8: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
2: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
8: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
2: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. For unka phone milaye 02088390880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.
10: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious. Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later, all at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly, fly more, pay less.
11: New hits on Leica Radio.

0: इसी को तो प्यार कहते हैं, LOVE. ये कितने प्यारे लेटर्स हैं ना, और जब सुनते हैं कोई भी आई लव यू कोई किसी को कहता है, कहने वाले को भी मज़ा आता है और सुनने वाले को कितना मज़ा आता है आप सभी जानते हैं. ये गीत आप तक पहुंचाया.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Like a radio.
0: जी हाँ, इस वक्त आपका साथ निभा रही है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल, और एक चेन बनाई है. हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है. सो अब जब से तो हो गया, अब मोहब्बत हो गई, तो मोहब्बत किससे हुई? कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है? मुझे तो ये गाना पसंद आया तो मैंने सोचा यही सुना दूं.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: This is Leica Radio across the Midlands. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Baden weekdays at 4 p.m.
2: जी हाँ, यही सिलसिला चलता है और मेरे बाद सैंडी शाही आने वाले हैं और फिर आएंगे अश्विनी और भी जो मेरे साथी बराबर मैसेजेस भेज रहे हैं. थैंक यू एवर सो मच मनु जी, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, अर्जुन जी, भरत गंगाराम जी, पमी सिंह जी इन स्लाव एंड कलानिधि देसाई, दिनेश सोरी जी, हाना, विनी, विनोद, वरुण एंड आप कौन है भी, हरिवदन भाई, सहर, मृदु जी, अरुणा एंड भूपेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. उलाश आपने भी ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच. सुनते रहिए, अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन होता रहेगा टिल 4 o'clock. नेक्स्ट आवर में हंसराज बहल जी को हम श्रद्धांजलि देंगे, उनके कंपोज किए कुछ एक गाने हैं.

भी प्यार में एक दूसरे को टीज करने में भी बहुत मजा आता है ना, है कहना, किसी को सुनाना, किसी मीन्स कह तो उन्हीं से रहे हैं कि कोई और है हसीना जिसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन है तो वही ना जिनके साथ ये बात करें, जिनको ये गाना सुना रहे हैं। किशोर दा और लता जी की आवाज़ें, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से चुना था मैंने इस गीत को, 1964 की फिल्म। इसी के साथ हम न्यूज़ के बिल्कुल करीब हैं, न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ, इसलिए कहीं नहीं जाना, यहीं

0: प्रोग्राम का सेकेंड आवर 2:12 हो चुके हैं. गुड आफ्टरनून टू यू. इफ यू हैव जस्ट ज्वाइन मी, तो फर्स्ट आवर के गाने आपने मिस कर दिए, तो कल भी मैं आप ही के साथ हूँ. 1 ज़रूर मेरा साथ देने के लिए पहुँच जाइएगा. मनु जी, विजय गुदरे, स्टोची जी, निर्मला जी, मिसेस शेख, मानसी जी, वत्सला जी, अरुणा जी, अजास शाह, दिनेश पोपट जी, विजय गनोवा, नरेंद्र पंचाल, फरूख जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप मेरे साथ साथ हैं फर्स्ट आवर से ही. एंड नरेंद्र पंचाल, फरूख मोहम्मद, मीनाक्षी, जैस्मिन, और आप कौन हैं, अपना नाम राजेश जी. आपने एक्चुअली इनफैक्ट दामिनी का गीत सुनना चाहा था जो मैंने प्रोग्राम में शामिल कर दिया. भारती जी, हाना, सभी सुन रहे हैं बड़े मज़े से. जगदीश जी इन बुशी, महेंद्र बरझारिया जी इन साउथ हैरो, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, अर्जुन जी, भरत गंगाराम जी, पमी जी इन सलाव, दिनेशोरी जी, तोशी जी, आप भी सुन रही हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. राइट, प्रोग्राम के इस आवर में पहले तो गीत आपने सुने डिफरेंट फिल्म से. उसमें हंसराज पहल जी का संगीत नहीं था, बल्कि ये दोनों गीत, पहला था दामिनी से एंड दूसरा गीत आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म से चुना था. इस गीत की 3 वर्जन्स है, एक मनहर उदास ने गाए, एक हेमलता ने और एक मोहम्मद रफ़ी साहब ने. तो मैंने रफ़ी साहब की आवाज़ को चुना. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया. और कमर्शियल ब्रेक के उस पार और उससे पहले बहुत सी चीज़ें और भी हैं. तो पहला ही गीत जो है वो हंसराज पहल जी की संगीत रचना है, जो मैंने मिस बॉम्बे से चुना है. 1957 में आई थी वो फिल्म. इनके बारे में मैं जानकारी ज़रूर दूंगी, लेकिन पहले कुछ और काम भी कर लें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज £1 आपका ब्रिटिश स्टर्लिंग का कैन गेट यू अप टू 129 rupees and 15 paisas, एंड यू कैन सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000 एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
4: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी,
3: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज. 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 2:30 अने सांजे 7:00. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म मिस बॉम्बे 1957 की ये फिल्म थी. रफ़ी साहब ने गाया था इस गीत को और आज के प्रोग्राम में हमने क्यों शामिल किया, क्योंकि हम याद कर रहे हैं हंसराज बहल जी को. हंसराज बहल जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1916 में, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे 20 मई यानी आज ही के दिन 1984. भारतीय हिंदी सिनेमा और पंजाबी की फिल्मों के प्रसिद्ध और सम्मानित संगीतकार माने जाते थे. उन्हें भारतीय फिल्म संगीत में अपनी अनूठी शैली और धुनों के लिए जाना जाता है. तो आज हम उन्हें याद करें. इनका जन्म हुआ था शेखपुरा, ब्रिटिश पंजाब में, और हंसराज बहल जी ने पंडित चुन्नी लाल जी से संगीत की शिक्षा ली थी और उन्होंने लाहौर में अपना एक संगीत विद्यालय भी खोला था. और हिज मास्टर्स वॉइस HMV जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर आप सभी जानते हैं रिकॉर्ड कंपनी थी, के माध्यम से अपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत सारे उन्होंने रिलीज़ किए थे. 1944 में ये मुंबई आए थे. उन्होंने फिल्म पुजारी जो 1946 की फिल्म थी उसके साथ एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की. क्या आप जानते हैं कि महान गायिका आशा भोंसले ने अपने करियर का पहला हिंदी फिल्मी गाना सावन आया हंसराज बहल जी की ही फिल्म चुनरिया जो 1948 की फिल्म थी उसके लिए गाया था. क्या बात है, काश मेरे पास वो गीत होता तो मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करती. उनकी सबसे बेहतरीन और यादगार रचनाओं में बहुत से गीत हैं, लेकिन एक गीत जो मैं अब शामिल करने जा रही हूँ, ये गीत बहुत बहुत फेमस हुआ. सिकंदर आज़म फिल्म का नाम था, 1965 की ये फिल्म थी और इसका देशभक्ति वाला गीत याद आ गया होगा आपको. नहीं याद आया तो चलिए कोका नूडल्स वालों की जानिब से वो गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ.
0: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं जो हंसराज बहल जी ने कंपोज किए, साथ साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करनी है। और मैं बता दूं, लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द आतिफ असलम लंदन कॉन्सर्ट टेकिंग प्लेस ऑन संडे 14th जून एट द O2 लंदन। टिकट्स अवेलेबल एट AXS एंड द वेन्यू। एंड रागासन के बारे में, दे आर द ऑफिशियल लाइका रेडियो नेटवर्क के कन्फर्म्ड पार्टनरशिप है उनके साथ विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स हमारी आप laikaradio.com से ले सकते हैं। Another beautiful song, बहुत पुराना है। फिल्म का नाम था मिलन। 1958 में आई थी यह फिल्म। इस फिल्म का संगीत भी हंसराज बहल जी ने दिया था। सैड सॉन्ग है लेकिन मुझे भी पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको भी भाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। याद आई, ट्यून याद आई, गीत याद आया। हाय जी अरुण। इसके अलावा इन्होंने बहुत से पंजाबी की फिल्मों में गीत दिए हैं। पंजाबी की सतलुज के कंडे, दो लच्छियाँ, लच्छियाँ, पिंड दी कुड़ी,

0: केदार कपूर जी ने इसे डायरेक्ट किया था, हेलन एंड डेजी रानी के साथ नलिनी जयवंत और अजीत खान ने इस फिल्म में काम किया था। संगीत आपने सुना हंसराज बैल जी का।
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियंट मिडलैंड्स।
0: आइए भी आपको बता दें कि साउथ हॉल ट्रैवल वाले क्या कहना चाह रहे हैं। मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स एंड इंक्लूड फ्लाइट्स एंड होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड वेस्ट। आप आराम से इन्हें विजिट कर सकें, इनकी वेबसाइट देख सकते हैं साउथ हॉल ट्रैवल, और यू कैन कॉल देम ऑन 0208-574-8410।
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Like a extra podcast update.
0: राइट भी इस बारी का टॉपिक है, टॉपिक क्या है कि लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th of May टिल 31st of May, एंड इस प्रोग्राम को होस्ट करें अनुज राडिया। पुराने एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, एंड विल्स एंड प्रोबेट पर होम स्कूलिंग डिबेट वेडिंग्स एंड बियॉन्ड। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
2: Leica Extra is here.
3: ये है
2: Leica Radio.
0: कल भी हमने मधुबाला जावेरी जी को याद किया था, इस गीत में भी उन्हीं की आवाज आप सुनने जा रहे हैं। जागू, ये था फिल्म का नाम। 1952 में आई थी ये फिल्म और संगीत दिया था हंसराज बहल जी ने।

0: शमशाद बेगम की आवाज पिंड दी कुड़ी, क्योंकि हंसराज बहल जी ने बहुत से पंजाबी फिल्मों में संगीत दिया, बहुत सी प्राइवेट एल्बम्स बनाई पंजाबी की, तो उन्हीं में से मैंने शमशाद बेगम की आवाज में चुना इस गीत को। उम्मीद करती हूँ पसंद आया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you Indian rupees 129.85, Pakistani rupee 373.28, Sri Lankan rupee 461.63, Bangladeshi taka 164.59, Afghani 84.57.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LEICA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's £108.05 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: This is Leica. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, भी IPL का आज का मैच ईडन गार्डन्स में हो रहा है एंड मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच. कोलकाता नाइट राइडर्स chose to field फर्स्ट, सो मैच शुरू होने वाला है. जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपडेट मिलती रहेगी.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
0: एक और गीत हंसराज बहल जी की ही रचना, उन्होंने ही संगीत तैयार किया था फिल्म दोस्त के गीतों का.

0: फिल्म का नाम था मुड़ मुड़ के ना देख। इस फिल्म के लिए मुकेश जी ने गाया था इस गीत को और कंपोज किया था इस गाने को हंसराज बहल जी ने। और आज हमने उनके गीतों के जरिए, उनकी कॉम्पोजिशंस के जरिए याद किया। आज ही के दिन वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे, 20 मई 1984। ही वॉज अ म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने बहुत सी पंजाबी फिल्मों में भी संगीत दिया। तो शमशाद बेगम की आवाज़ में मैंने एक पंजाबी का गीत भी शामिल किया था। और बता दूँ कि आशा जी ने पहला गीत जो गाया था वो हंसराज बहल जी ने ही उन्हें गवाया था फॉर द फिल्म चुनरिया। हंसराज बहल ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मुबारक बेगम इन दिस फिल्म फूलों के हार। एंड इसके अलावा बहुत सी और भी मधुबाला जावेरी को भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। न्यूज़ के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं, न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूं। और एक और क्या हस्ती को हम याद करने जा रहे हैं और उनकी फिल्मों के भी कुछ गीत मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी, इसीलिए मेरा साथ देते रहिएगा। और न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, एक हस्ती राज मेहरा जी को याद करेंगे हम। तो सुनते रहिए, साथ देते रहिएगा।
1: Across the Midlands on DAB Digital Radio. This is Leica Radio, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Sir Keir Starmer's confirmed a planned increase in fuel duty has been scrapped. The tax was due to rise in September, but will now be kept frozen for the rest of the year due to the impact the Iran war is having on prices at the pumps. Meanwhile, Downing Street's tried to clear up some confusion over sanctions on Russian oil. It was announced last October that diesel

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। ये गीत मैंने सुना था दोस्ताना से, 1980 की फिल्म थी। एंड इस सावर का पहला गाना फिल्म खूबसूरत से था, 1999 की फिल्म थी, जिसमें आवाज़ें आपने सुनी थी अभिजीत एंड नीरजा पंडित की। एंड दूसरे गीत में किशोरदा की आवाज़ थी। अब आर्टिस्ट ऑफ द वीक भी हैं, और इस बारी हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं शमी कपूर साहब, जिन्होंने ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया और उनकी तकरीबन सभी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे हैं, और उनमें से चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आज फिल्म जानवर का गीत चुना है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। कौन सा गीत सोच रहे हैं आप कि मैंने चुना होगा, बताइए मुझे। अगर आपको पता चल रहा है कि सरिता की चॉइस क्या हो सकती है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे बहुत से मेरे साथियों ने अभी अभी भी ज्वाइन किया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। व्हाट्सएप के जरिए मैंने आप सभी को जवाब भी दिया है, थैंक यू। और आफ्टर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हम एक और कैरेक्टर एक्टर को याद करेंगे, राज मेहरा जी। एंड ही हैज़ वर्कड इन मैनी फिल्म्स, एंड इन 1952 की एक मूवी थी आनंद मठ, जिसमें उन्होंने निर्देशन की थी और वो बहुत नोटेबल थी। एंड ऑल्सो इन शारदा, जिस देश में गंगा बहती है वो कौन थी, नीला आकाश, आए दिन बहार के, तीसरी मंजिल, इन सभी फिल्मों में उनकी निर्देशन थी। तो अब तीसरी मंजिल का गीत सुनना चाहेंगे या जानवर का, जल्दी से डिसाइड करके मुझे बता दें कि कौन सा गीत आपके दिल के ज्यादा करीब है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी अगर आज आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो your £1 British sterling can get you up to कितने पैसे, 129 रुपीस एंड 15 पैसा। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000 एंड ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। Terms and conditions always apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 2 for 5, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN
2: while stocks last.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
12: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
15: Yeh hai Leica Gold.

0: good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: भी मेरे बहुत से साथियों ने पहचान लिया था और बिल्कुल ठीक कहा था, ये गीत सुनाने वाली है. सो आपने चाहा कि यही गीत शामिल हो तो मैंने यही गीत शामिल कर दिया. अब मैं राज मेहरा जी के बारे में बता रही थी तो कुछ और बातें उनके बारे में शेयर करना चाहूँगी और उसके बाद कुछ एक गीत उनकी फिल्मों के. दो देवर नॉट बीन पिक्चराइज ऑन हिम. ही वॉज बॉर्न ऑन 20th of May 1913 इन बनारस और उसके बाद ही made his film debut with Shahid and Shahid Latif's Shikayat se unhone shuru kiya tha 1948 mein. Uske baad Pyar Ki Jeet, Aaj Ki Raat, Naach, aisi bahut sari Patanga, Sanya, Khazana, ye sari filme thi jinme kaam kiya. 1952 mein he narrated Anand March, jiske bare mein maine aapko already bataya. And one of Raj Mehra's most memorable roles was the काशीराम इन 1957 फिल्म शारदा. और शारदा का ही एक गीत मैंने चुना हुआ है. आइए सुनते हैं ये गीत और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा. लता जी एंड आशा जी की आवाज़ों में है ये गाना. ही प्लेड द फादर ऑफ राज कपूर इन दिस फिल्म एंड हिज परफॉर्मेंस अर्न हिम द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग.

0: track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: राइट, राज मेहरा जी को याद करें. थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. हिज पोर्ट्रेल ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट इन जिस देश में गंगा बहती है इन 1960, वो कौन थी, वे ही अगेन प्लेड पुलिस सुपरिटेंडेंट. एंड नीला आकाश इन 1965, एंड ही वॉज माला सिन्हाज फादर. आए दिन बहार के एंड प्यार ही प्यार, आप आए बहार आए, शोर, बेईमान, राजा रानी, लोफर आर फ्यू. इन थोड़े से मैंने नाम बताया कि इन फिल्मों में इनके काम को काफी अप्रिशिएट किया गया था. दो ये गाने उन पर पिक्चराइज नहीं हुए, लेकिन उन फिल्मों के गीत मैंने चुने हैं. आइए सुनते हैं अगला गीत फ्रॉम द फिल्म नीला आकाश.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: कवि प्रदीप जी की आवाज़ और उन्हीं की रचना आपने सुनी। बहुत प्यारा गीत फिल्म नास्तिक से बहुत से मेरे साथियों ने तेरे फूलों से भी प्यार वो भी सुनना चाहता, तो आने वाले दिनों में वो गीत भी मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी। और आज राज मेहरा जी की कुछ एक फिल्मों के गीत मैंने सुनवाए। उन्होंने 1993 तक फिल्मों में काम किया। लास्ट फिल्म थी आंसू बने अंगारे और 10 अप्रैल 1993 में वो गुजर गए थे, लेकिन आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हीं की फिल्मों के कुछ एक गीत शामिल हुए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 129.67, Pakistani rupees 373.98, Sri Lankan rupee 462.49, Bangladeshi taka 165, Afghanis 84.38.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Right, gold rate is worth £108.05 per gram.
1: Ram Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. India Cricket Score Updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हो रहा है इस वक्त मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, एंड कोलकाता नाइट राइडर्स चोज टू फील्ड। इस वक्त मुंबई इंडियंस ने बना लिया 52 रन्स और उनके चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इन 7.3 ओवर्स।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए। Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Traffic and travel.
3: I'm Greg Edwards. On the M42 northbound at Junction 4 at Shirley, there's a breakdown blocking a lane on the exit slip road, so one to be aware of if you're heading that way this afternoon, although traffic isn't too bad. It's looking okay on the M69 on the sensors, and traffic on the M1 is on move both north and southbound. Off the motorways in Loughborough, a reminder the A6006 is closed for roadworks between Park Lane and the Haddonware Industrial Estate turn off. In Earlswood, the B4102 Earlswood Common is still closed following an accident this morning, so traffic's diverting around the Umberslade Road junction. Quite slow in the area as a result. And that's your latest traffic and travel.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉनस्टॉप।
2: शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं।
3: हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा।
1: Listen to Laika Radio 90s on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
4: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
1: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at laikamedia.co.uk. A Laika Radio Classic plays now.

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, LeicaRadio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
4: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app.
4: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience samhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: Abira, yahan se mera rasta bahut mushkil hone wala hai. Kya tum mere saath? Ye faisla mera tha. Bhugat tum rahi ho. Main kuch nahi kar pa raha hu, kuch nahi kar pa raha hu.
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड यप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: Remembering and reminiscing those nostalgically noughties with Radio Wally.

0: Look it.
1: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
5: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
6: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
1: Greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.

0: Radio.
1: Time for another Like a Love Classic.
2: रूप तेरा मस्ताना प्यार